पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत ली। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गए सुसमन, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारा।